0: 持ち込みだったり、そういうホースポーツの発想、リファルトを仲間にしたり、ジャンプというホースの発揮、今の学校を広告したり、ここに書いていたホースって言ってい
1: た。あれよ、あれよ、あれよ、失礼したいかペッパーだよ。
2: ユキ様にラキさんが言ったパイタイチーと言って、失礼したいかペッパー、ギリンラキシンカ、ギリンデバリカ、ビュービーダルルル、アイサケマサ。
1: トリザ、マスワケティロカルトリ、ウナチャークマンドアンビ、キラウロカル、キラウシキン、Worker Girald Sana Azna, Moshin Has, Domut, Jaukobiu, Arukobiu, Lassunkobiu, Pedina da Tata Karika Biuharu.
2: Posso conhecer o Ojadi, Kukra Paranio Saegoni Arukalagi, Kukra Kapatra, Kukra Kodana, Kalemisi Kodana, Asaini Kmolma Yuria, DAP, Potas, Trebit Molma Gaita, Kishaner Leitra Hide, Nastaria, Sampurna Biubizan, Rusia, Estaero Pekma Paetra.
1: Proprietor Krishna Sreshta, Sreshta Egropek, Baso Riki San Subbehi Tachin, Pustanaleko Purba Zayna.
2: Chatrik, Bizeya Dasamishu, Mati Paoli Ratskar, Parvaku Amsama, Hamra Sampurna Trahak Parva, Ishto Vitra, Sures Mata Bides Moran, Vega Sampurna Hindu Dajvai, Didi Bahini Nama, Hardik Moramai Sumatamna, Bekta Parva Zayna. Namahu Nani, और किया देने क्या कुलजी
3: कहाँ गई भाई ये पाव किलो का नहीं आता रहा वो बने ना तो क्या कुछ तो अच्छा ना रहा कहाँ तो ये ना कुछ कुछ ना सब है
4: ये तो अच्छा नहीं था सर नवजी और सरकारी कुछ कुछ आता यार तो क्या बना और किसी से उत्तर मत करना ये नहीं था
3: हजुर एक किसी के लिए मेरा उसे मार देना चाहती अब बर्बाद होता हूँ सुनिए मार और उसे पति ना सरप्राइज मार इंडिया इटालियन धार पटने पर साइटो इंडियन मिनिकिरन कंबाइनर राइस मिल सारा मशीन आर्टिस्टर साफ करने लगा उसे कम से कम ताला बना अपने किसी परिणाम का संसेगा खेती किसान करना सब कुछ एक समान करता उसे निकाल बिगड़ सब मेरे किसी का मशीन के इसे छुटना बना जाए सरकार का बसे अगर मत आज अपने ऊपर आने था अच्छा आप ना एक किस संबंधी को मुसलमान की साथी यदि चार की बसे समझो कि आप पास परिवार का उसे को किनारे सब राज मार समझो कि तो बस
4: अठारह में बात सोचती और किस सुनना सुनना तो अठारह में दूरी चौबीस सुनना चौबीस अस्सी
3: नमस्कार सरकारी संस्था का प्रचुर लाभ उसे बुलाते हैं उसे रुकते हैं

सुविधा रहे। और जहाँ दूध देने वाली संगठन सहारा डेयरी है, इस सभी में बात करें,

0: Krishna Shrestha, Shrestha Prophet Pastori Pradya. स्वस्थ संतान को गर्भ अवस्था स्तनपान थप खाना का संग नियमित रूप में आयरन कैल्सियम खानी सुझाई स्वस्थ गाय सुरक्षित परिवार
1: रेडियो द्वारा संदेश।

0: की हमने गाय कुमन लागर हमारे हमने आपकी उपस्थिति में बांटी। आज हमने अवश्य गाना प्राणपुर कंपनी पैरों नाम ने सुना
1: मन लागल हमारे पार्टी श्री राष्ट्रीय

0: पादा द्रौपदे की प्राणवाट सम्मान प्राप्त सारा तिरियन सीट सकिने दूध संकल देखि दूध संकल समाते पशु पंची तथा मृत्यु को दादा कृषि सामग्री पशु तथा प्राणी विभाग परामर्श गोबर तथा मृत परिचन समुदाय सेवा युक्ति कमा
1: अब जानकारी का लागि कार्यालय उच्च अधिकारी 98 00 53 59

को दाना माथा को दाना औषधि प्राण चक्कर बिमारी बिउ बिजन मल खाता तेस्रो सबै उपलब्ध छ।

0: सा नियमित रूपा हेतु का शारीरिक व्यायाम भी मुख को स्वस्थ बनाउन मदद गर्छ।
1: सन्तुलित भोजन, पर्याप्त निद्रा, सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
0: 40 वर्ष पुगेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिलो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा फाक्पा र फल फुल खाऊ।
0: मद्यपान र धूमपान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउ।
2: रेडियो गोपाल स्टेशनद्वारा जनहितकारी सन्देश। Thank you.

0: ऐसे साबुन को रसाई हानिकारक नहीं रहा क्योंकि यदि संपर्क व्यवस्था उपचार केंद्र में चाहिए
1: विश्वास गर्न वा सही जानकारी पाइला लघु उपचार केन्द्र खानापा गरी सफलता भएका आधिकारिक स्टेट बैंक नेपाल र गुवाहाटीमा जाँदा आवश्यक जानकारी दिइसकेका नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणमा

इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब ऑफ काठमांडू मिडटाउन का संचालन विश्व भर

सपना चौधरी पत्नी है तुलसी चौधरी और कन्हा लड़िया है राम प्रसाद चौधरी शेरू प्रसाद चौधरी और पारु चौधरी नचिया और मटरिया कई थो पचास जन सहभागी होकर मटाल कुमारी चौधरी का राम नामा राम कुमारी चौधरी का राम नामा नाच लिया कमर वहां जाने ली और सैकड़ा बेलोरी मत सख्या नाच विकेरण लक्ष्मी धमनवा बदली सख्या नाचना जमी पत्ता नाचना और खरे मंडल बदलिया करता पचास जन सखी पचास जन सख्या नाचना महिलाओं का उज्जवल रंगी भैया बुनिया लाल चोलिया और लाल उज्जवल रंगी ग्रंथी लगेना करता सख्या नाचना विशेष समुदाय पांच पांडव कौरव और कृष्ण लगाई देवी देवी देवता गीत कर माध्यम से प्रार्थना कई शांति सुरक्षा से कामना करना सरल और ठाकुर भगवान जानकर हमको बैठा

बंगाल के कारंगी वहां को आवाज बजाई थी थी बारामती नगर पालिका किसानों का सब पक्षा रंगदान और इनकी वितरण का तिरंगा किसान बना हुआ खादाना नगर पालिका किसी पचपन हजार किसानों पर 5,000 रूपए के अन्य बिया वितरण कर लगा को बारामती नगर पालिका कार्यालय नगर कृषि विकास शाखा जयनगर प्रत्याशी आर्थिक वर्ष 2083 84 का स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार गेहूं बिया वितरण कार्यक्रम संचालन कर लगा नगर पालिका 2083 पंद्रह जारी कर सूचना अनुसार 100% अनुदान अन्य बिया प्रति निवेदन पेश गर्न किसान कर कृषि विकास शाखा जयनगर मध्ये बिया वितरण समिति भन्दा पहिला व्यक्ति श्रोहित बिया वितरण कार्यक्रम सुकक्षम संचालन हुन बारामती नगरपालिका कृषि विकास शाखाका प्रमुख

अनुसार खाने का था। पूर्व विभाग का प्रारंभिक आकलन अनुसार उक्त पहले बाढ़ करीब 3.5 मैग्नीट्यूड को भूकंप परावर्ग

जब सब कुछ एकाएक नहीं दिवस में पानी सदारी दादो दुनिया की स्मृति ऐसी सवारी रात दिन पसंद समिति काम करें विदेश में रात दिन पसंद समिति काम करें विदेश में

चलने रखने पड़े सारा जिम्मेदारों को मुश्किल हुई कर ऐसा अपने दिया को दबा रहा था इतने बड़ा जैसा आज देखा तो देखा और तो तेरे क्या बनने से नहीं कि मैं किसी को अपना फोन भी दे दे कि टेस्ट जिम्मेदारी सोचकर क्यों नहीं ली सारा बेटियाँ को कभी ना उतरना उतर जाना जाना करना जितनी जितना आते खान लगे ना दस बच्चे की पसंद है नहीं बाबू के लाभ मारे नहीं होते हैं साल से एक बच्चे नहीं अब इस समय नहीं देखिए तेरे को कौन जिम्मेदारी और हम हर सुबह मात्र मोदी टीम में वो बेला बना देता है और मैं चैन में लगा रही हूँ दिन पागल दिन की आते बच्चे बेटा गांव जब आपकी अपनी प्रमुख का बिजली कराया तो बाबू ने अपने के दया पाया बल्कि इनमें टिकली ना और ट्रेन बिचारी बल्कि

निर्वाचन आयोग को बताया गया था। सरकार ने निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप में